0: जो दिल द वो दूसरे आजे लुइस ने ओडम फूचम मंदे जाखे युरम बोल गली
1: जा वैरला बैठते।